वॉज फ्रॉम द मूवी वारिस आपके लिए रेडियो प्लस पर किशोरदा और साथ में लता मंगेशकर जी की आवाज में. चलिए अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं. किशोरदा की आवाज में चला रही हूँ ब्लैकमेल फिल्म का गाना टू मेक योर मॉर्निंग टू दी गुड.

थोड़े की जरूरत है, हमेशा ऐसा ही तो होता है. जो होता है उसे हम देखते नहीं है और जो नहीं है उसकी तरफ नजर रखते हैं. ऑलवेज से बन कमराज, वेल बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, डोंट जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस. चलिए अगला गाना चला रही हूँ, टार्ज़न फिल्म का.

वेल, जादू है आपका ही जादू है जो हमेशा रेडियो प्लस पर मुझे खींच कर ले आता है. बहुत बहुत शुक्रिया मैं सिवान कमराज फॉर लिसनिंग टू मैजिक मॉर्निंग एंड चूजिंग रेडियो प्लस टू मेक योर मॉर्निंग संडे गुड गुड.

Well, that was from the movie Imtihan. आपके लिए Radio Plus पर आप साथ दे रहे हैं अपनी नीलम शर्मा का 90s के गाने चल रहे हैं to make your morning goody good.

मोहब्बत की घड़ियों के साथ आप सभी को दिल से स्वागत नमस्कार कहते हैं, सलाम आप सभी को कहते हैं। ये सफर मोहब्बत का है जो सालों से चल रहा है, जिसे हम पहचानते जानते हैं और दिल से महसूस कर लेते हैं, जिसे कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत की खूबसूरत घड़ियों के साथ आप सभी को वेलकम कहते हैं।

सफर तो खास है जिसमें हमेशा की तरह आप लोग हमारे पास होते हैं, महसूस करने के लिए यही थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो सफर की खूबसूरती और भी हमारे लिए बढ़ती जाती है, क्योंकि महसूस करने वाले मोहब्बत को हर जगह पर बल्कि दुनिया के हर कोने पर महसूस कर लेते हैं। जी हाँ, रात की खूबसूरत सफर जमाल के साथ कदम मिलाते जाइए, महसूस करते जाइए वो खूबसूरत लम्हों को जो आपने गुजारे होते हैं, या अगर अभी इस वक्त आप गुजार रहे हैं, सब महसूस करते जाइए दिल से, एंड दिल की गहराइयों से लाजवाब खूबसूरत मोहब्बत का सफर।

मुलाकातें होती रहती हैं, किसी की वो मुलाकातें मुकम्मल हो जाती हैं तो किसी की अधूरी रह जाती हैं। हर इंसान के एक अपना किस्मत होता है, लेकिन इंसान के हाथ में ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिया है जिसे कहते हैं कि कोशिश। वो हमेशा की तरह मोहब्बत करने वाले करते रहते हैं। ये सफर इतना खास होता है कि जब भी लगन से आपको वो मोहब्बत हो जाए, सो दिल कुछ अलग अंदाज के साथ महसूस करने के लिए उस इंसान को देखना चाहता है, क्योंकि मन चाहता है कि एनी टाइम, हर एक समय के साथ, हर एक सेकेंड के साथ वो खूबसूरत शख्स हमारी निगाहों के सामने ही हो। लेकिन थोड़े से समय के लिए भी आ जाए तो ऐसे लगता है कि हमने अपने चांद को देख लिया। लेकिन ये खूबसूरती होती है उस लगन की, उस मोहब्बत की, जिसे महसूस करने के लिए हजारों बल्कि जितना भी समय गुजर जाए, जितना भी वक्त गुजर जाए, बल्कि सारी क्यों ना गुजरे हो, लेकिन जब भी वो इंसान आपकी निगाहों के सामने आ जाए, सो दिल गुले गुलजार बन ही जाता है, बेताब से दिल का मरहम वो इंसान बन ही जाता है जिसके हमें हमेशा की तरह तलाश होती है और दिल से उनसे बेशुमार प्यार करते रहते हैं।

और इस एक्सट्रीमली रोमांटिक गाने के साथ रेडियो प्लस पर साथ देते जाइए हमारे साथ, दिल से दिल की गहराइयों से हर एक लम्हे को महसूस करते जाइए जमाल के साथ, जुड़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

तो मोहब्बत की घड़ियों के साथ कभी कभी महसूस करने के लिए कुछ सुंदर गाने हमारे लिए एक बहाना सा बन जाता है नायाब खूबसूरत वक्त की खूबसूरत यादों में गुजरने के लिए। जी हाँ, कुछ यादें ऐसी होती है जनाब कि आप जिंदगी में जहां पर भी चले जाए और तन्हाई के आलम में थोड़ा सा बैठ जाए, उस यादों को ताजा करने के लिए थोड़ा सा भी सोच ले अकेले तन्हाई के आलम में, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपने एक अच्छे से समय एक अच्छे से वक्त उस शख्स के साथ गुजारा होता है जो आपके दिल के बहुत ही करीब था। लेकिन मोहब्बत इतनी खास होती है जिसकी बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अंत नहीं होता, इख्तिताम नहीं होता। जिंदगी की खूबसूरती वही है कि जब तक सीने में दिल है और उसके अंदर धड़कन है धड़कता रहता है, सो ये मोहब्बतें भी हमेशा की तरह कायम दायम रहती है हमारे साथ।

0: और इस ब्यूटीफुल गाने के साथ मोहब्बत के अल्फाजों को जितना मैं अर्ज करूं अपनी जबान से सो कम होगा, लेकिन कुछ अल्फाज दिल को जोड़ने के लिए एक बहाना सा बन ही जाता है। सो एक नाम, एक जिक्र, एक तुम, एक तुम्हारी फिक्र। जी हाँ, एक नाम, एक जिक्र, एक तुम, एक तुम्हारी फिक्र, बस यही तो है जनाब इश्क मेरा और जिंदगी मेरी।
1: प्यार, इश्क और मोहब्बत विद जमाल खान।
2: रेडियो प्लस, प्लस क्यून रेडियो, वोट्र वॉय ओ क्वोटिडियन।

ब्यूटीफुल गीतों के साथ ब्यूटीफुल शायरियां, गजलें हमारी जबानी आपके लिए बिल्कुल अर्ज हुई, लेकिन महसूस करने वाले हमेशा की तरह अल्फाजों को महसूस कर लेते हैं। हमने तो बिल्कुल तस्वर किया होता है, ख्यालों में बिल्कुल सोचा होता है, लेकिन जब भी प्रैक्टिकली हमारी निगाहों के सामने कोई भी आ जाए तो दिल वो खूबसूरत अंदाज के साथ गोले गुलजार बन जाता है। जी हाँ, बेहतर से बेहतरीन, रंग से रंगीन, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन वो लफ्ज जो हमारे लिए बड़े अहमियत एक शख्स के साथ रखे लेते हैं।

सो इस रात की खूबसूरती के साथ चले अभी के लिए जाने का समय हो चुका है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो हमेशा की तरह मुस्कुराते जाइए, मोहब्बतों को बांटते जाइए, क्योंकि हम आगे की तरफ होते हैं और मोहब्बत सायों की तरह हमारे पीछे दौड़ता रहता है। जिंदगी के एक खूबसूरत हिस्सा, जब आप किसी के नाम कर लेते हैं या वो आपके नाम कर लेता है, तो उसकी कदर और इज्जत हमेशा की तरह करनी ही चाहिए। सो टू आवर्स का सफर इख्तिताम तक पहुंच चुका है। अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है, इसलिए टू आवर्स का सफर भी बहुत जल्दी गुजर गया। सो जिंदगी के अच्छे वक्त को इंजॉय करते जाइए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके लिए कुछ लाजवाब खूबसूरत अल्फाजों के साथ, गानों के साथ। लेकिन चले आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रात मांगते हैं। गुड नाइट, शब बख़ैर, स्वीट ड्रीम्स। जमाल को इजाजत दीजिएगा। गुड बाय।